0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Hindi.
2: Melbourne Museum ki nayi bhavya pradarshini, Rome, Empire, Power, People, ab khul chuki hai. Australia mein pehle kabhi nahi dekhe gaye 180 adbhut aitihasik avsheshon ke saath. जानिए ऐतिहासिक रोम की विलासिता, ग्लैडिएटर्स का रोमांच और आम रोम के लोगों का जीवन. मूर्तियों और मोज़ेक से लेकर आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं तक, प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ जानें. बुक करें रोम एम्पायर पावर पीपल museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: पेश है साइंस वर्क्स में नई और जीवंत प्रदर्शनी. कलर, सी द वर्ल्ड इन अ न्यू लाइट. यहाँ देखें चमकते खनिज, ट्रिकल भ्रम और बच्चों के लिए रोमांचक हाथों से किए जाने वाले व्यवहारिक प्रयोग, साथ ही बड़ों के लिए भी भरपूर आनंद. रंगों को देखें, रोशनी के साथ खेलें और इन सब से आपको विस्मित करने वाली प्रदर्शनी अब साइंस वर्क्स में खुल चुकी है. टिकट बुक करें museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: अगला कार्यक्रम हिंदी भाषा में प्रसारित होगा.

मेरे मेलबर्न के प्यारे मित्रों और पूरे विश्व में आप सभी लोग जहाँ भी हमारा गीतांजलि कार्यक्रम सुन रहे हो, आप सभी को हमारा यानी दीप्तिमान और शारदा का सप्रेम नमस्कार। आज 11 जुलाई 2026 की शाम है। मेलबर्न में ठंड ने अपना घर जमा लिया है और वहाँ भारत में गर्मी जाने को है और मानसून आने को है। मानसून हैज़ कम टू सून, परहैप्स वी विल नो लेटर। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम एक बहुत ही धार्मिक भाव से प्रेरित है। हम लोगों ने हाल ही में कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पूरी की और हम लोग वापस आए वहाँ से, और इस बारे में हम आपसे आज काफ़ी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे इम्पॉर्टेंट टिप्स और क्या करें क्या ना करें कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में। चलिए सुनते हैं ये गाना।

मित्रों, जब हम एक अपने हिंदू धर्म की बात करते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन लोगों का जो भव्य चेहरा है वो सामने आता है। इन सब में, इन तीनों देवों में महादेव तो एक ही है, भोलेनाथ बाबा, जिनके प्रताप से, जिनकी करुणा से, जिनकी दया से हम लोग सदैव आप्लावित रहते हैं और हमारा जीवन सत्यम, शिवम और सुंदरम हो जाता है।

मित्रों, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करते हैं। ये यात्रा काफ़ी दुरूह मानी जाती है और विशेष कारणों से। मेन जो मुख्य कारण इसका दुरूह होने का है कि ये लगभग 55 किलोमीटर का एक ट्रेकिंग है या वॉक है जो करना पड़ता है, वो भी तिब्बत में, तिब्बत के ऑटोनोमस रीजन में जो कि अब चाइना के पास है। लेकिन सबसे मुश्किल जो एस्पेक्ट है, डायमेंशन है इसका, वो ये है कि ये हाई ऑल्टीट्यूड, काफ़ी ऊंचाई पर ये ट्रैकिंग करनी पड़ती है। हम लोगों ने जो अपनी यात्रा की 24 जून से 5 जुलाई तक, तो हम लगातार 3650 मीटर से लेके 5200 मीटर के आल्टीट्यूड पे रहे। उस आल्टीट्यूड पे एक एक कदम चलना मुश्किल होता है। आप 5 सीढ़ियाँ चलते हैं और आप थक जाते हैं, सांस फूलने लगती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लगभग 65% होती है समुद्र के। तो वहाँ जाकर मालूम होता है कि जो प्राण वायु है, ऑक्सीजन, वो कितनी वैल्यूएबल, कितनी अमूल्य धरोहर है हमारी, और हमको इसकी रक्षा।

0: फिर वहां से हम आ गए तिब्बत की राजधानी लासा में। लासा 3650 मीटर की ऊंचाई पर है। जैसे ही हम लोग वहां लासा पहुंचे, हमें हल्का सा चक्कर आने लगा और हमारे पैर अनस्टेबल हो गए। हमें लगा जैसे कि जो धरती है वो धीरे धीरे हिल रही है। ये सब सिंपल साइंस हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस के। तो वहाँ पे लैंड करते ही हमें एक्यूट माउंटेन सिकनेस का एक हल्का सा मॉडरेट सा शॉक लगा। आप सोचिए कि आपकी बॉडी, हमारा शरीर जो कि समुद्र तल पर रहने का अभ्यास होता है, अगर उसको अचानक से 100% ऑक्सीजन से 65% ऑक्सीजन देना शुरू कर दें तो लंग्स, हमारे क्रिटिकल ऑर्गन्स परेशान हो जाते हैं, वो शॉक हो जाते हैं। अचानक से 5% ऑक्सीजन की कमी हो, तो इन कारणों से हमको पहली बार AMS का सामना करना पड़ा।
1: तेरे माने एक तरफ, तेरे निराश एक तरफ, तेरे माने एक तरफ, तेरे निराश एक तरफ, सारी दुनिया देखी है पर कैलाश एक तरफ।

पे जो कोई टेम्पल है बौद्ध धर्म का, प्राचीन टेम्पल 950 सदी में बना हुआ टेम्पल, हम लोग दो दिन वहाँ पे एक्लिमेटाइज किए, फिर उसके बाद हम चल दिए। अब तिब्बत से लासा से लेकर कैलाश मानसरोवर की जो ट्रैकिंग शुरू होती है, वहाँ जो बेस स्टेशन है दार्चिन, उसकी दूरी लगभग 1200-1300 किलोमीटर है, यानी 4-5 दिन का बस में बैठकर सफ़र। और वही शायद सबसे अधिक चैलेंजिंग पार्ट था हमारे लिए। बस में सुबह 8 बजे बैठना और फिर दिन भर बस चलती थी, शाम को कभी रात में 10 बजे तक चलती थी। हमारा पहला पड़ाव था लासा के बाद शिगात्से। शिगात्से तिब्बत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है। और हमें एक चीज़ जो देखी पूरे तिब्बत में, चीन ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हुआ है तिब्बत में, कि वो कभी जो मेनलैंड चाइना है उससे भी अधिक अच्छे से डेवलप किया। हर तरफ हाई क्वालिटी रोड्स, 120 किलोमीटर पर आवर से चलती हुई 4 लेन रोड्स, पहाड़ों के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन टावर्स बने हुए हैं, टेलीकॉम टावर्स बने हुए हैं, सो कम्युनिकेशन, बिजली और रोड चीन ने तिब्बत के कोने कोने में पहुंचा। चीन धन्यवाद।

मित्र हमारा एक और पड़ाव जो रास्ते में पड़ा, जो हमको काफी विस्मरणीय रहेगा, वो एवरेस्ट बेस कैंप। जब हम लोग पहुंचे तो हमारी

और जैसे ही सूरज ढला, सूर्यास्त हुआ, तुरंत ही चंद्रोदय हो गया, चंद्रमा का उदय। और चंद्रमा की शीतलता ने फिर से माउंट एवरेस्ट की चोटियों को अपने सुनहरे से आंचल से ढक लिया। प्रकृति का यह अनुपम रूप बिल्कुल हम लोग मुग्ध होकर देखते रह गए। एवरेस्ट बेस कैंप डेफिनेटली हमारी इस पूरी ट्रिप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा।

उसके बाद शिगात्से होते हुए हम लोग फिर सागा गए, एवरेस्ट बेस कैंप सागा, फिर टाचन जो है वो कैलाश जो बेस स्टेशन है वो मान लेते हैं, और टाचन के हमने मानसून झील गए, वहाँ पर भगवान शंकर माँ पार्वती की अर्चना की हमने, वहाँ पर हमारे जो गुरुवर हैं उन्होंने हम सब के लिए एक रुद्राभिषेकम का पूरा पाठ किया, बहुत ही अनुपम धार्मिक और बिल्कुल भक्ति से ओत प्रोत दृश्य था। मानसरोवर के तट पर बैठकर पूजा करना, शंख की आवाज़ पूरे आसमान में गूंज रही है, और हमें ऐसा लगा कि साक्षात हमारे सामने हमारी अंतर में

0: अरे भाई कहाँ जा रहे हो?
1: मंदिर जा रहा हूँ।
0: मंदिर तो बंद है, मंदिर पूरे एक साल बाद खुलेगा।

मित्रों, जीवन में सत्यम, शिवम, सुंदरम, इन तीन डायमेंशंस में सबसे सुंदर और सबसे प्रिय शिव तत्व है। शिव तत्व का मतलब है कि हम टॉलरेंस रखें, अपने आसपास जो हमारी कायनात है, हमारा परिवार, हमारी कम्युनिटी है, उस पर हम भक्तिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, नटराज जैसे महानृत्य में जीवन को सराबोर रखें। साथ ही अगर कोई उद्दंडता करता है तो फिर तांडव का भी प्रयोग करें। ये है शिव तत्व। ऐसे महान भोलेनाथ, आदिदेव, लॉर्ड शिवा, शंकर भगवान को प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी सभी की कैलाश यात्रा, कैलाश पर्वत यात्रा सफल हो, सुफल हो और आपका जीवन शिव तत्व से परिपूर्ण रहे।